शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर धनस बाण और उसके तीर जड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जेडे दूसरे तीर ने ना वह वज जाना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बार नहीं आते, जो एक बार अंदर तस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी है, वोदिया दो कड़िया होंगे एव मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एव मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहदिया हूं आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया, पता की हाल हो सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन कर ले आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं सी पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वह जिद सिगरट पीते होंगे ऐ करके वह दाड़ी भी सिखा चट फूकते थे अग लाती उड़न दह गए, जिहड़ी बीबी जी सी वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश, पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना ते तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा ते कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वी सी आर वेखना सी इह कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी जा गहने पाए सी, उन्हां दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच सरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरी जा के छड के बाइज्जत तौर ते छड के ते आउंदे सी, उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर ली, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया कुरलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा विआह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी को हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ, उन्हां पंडितों ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कही नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो यह पांच शस्त्र रखो धड़कधार अड़ियर ऐसे तीर रखो बार आने लगे नाल आंदरा कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हों सरिए लैके आए ना मारन वह सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा ए भुआ के सरिए मारी फिर ए बल पा के सरिए काबू कर लेंद खिच के सरी अगले का अपने हाथ ही फड़ लेता उन्होंने हथे कर सुटी एक ही सुटी का बस फिर बोरे सो दिया, इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, यह तुसी पढ़ करके जाओ शस्त्र दे धार नहीं बनना डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी सिखा सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत ते महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख नूं प्यार दिता मौत नूं घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा मार दूंगा ते सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਰਾਹੂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

आग है। बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां की फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल ते उन्हें रात ही खोले सी ते डंडे इन्हें हाथ ही फड़ाते सी, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असी डह सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साढ़े सिंह साहब बहादुर महाराज इन्होंने नमस्कार बख्शन, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दी और इन्हों को शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन भेटा दिता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर, जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, त्रिकच्छ तुरंग सपच बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केवर परबते ता सोर दिवाले पावेंगे, फल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक टुक, निक्षे जिम केवर परबते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हों जो फिर परबत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान आ उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, अगे की है सिंह बुक्के, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ, ए बाबे का छाल मार के ना शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, जकारे छड़ते पंज पै पंज के पांच सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे आने, जदों उन्हें देखा दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 50 सत्ता गोगे गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ऐ देखने वाले भजन, तो फिर एक उठे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हैं, ना असी बुढ़े मारते हैं, ना असी बच्चे मारते हैं, ना असी भजदे मारते, असी भजदे भी मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाते जे आते उन्होंने छड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे है जी। 12,000 दुष्ट ए साले बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 बजे दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद।

धारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग चक चक रहे देव दानम मुन छक छक।

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो नीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

पिताजी, मेरे निरंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा, पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी। कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा। तली उत्ते मक्खन पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह। अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा ओ ही दस दो तो मेरे सदगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन। किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विन दी चीजा परोम दी है, तार विन दी चीजा परोम दी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर

अगे अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहे हैं सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटकाउंदा आखो श्री वाहिगुरु। ले मरदाने हुण बोली ना बेवे नानकी दी आस पूर्ण करनी है। हजूर आए अडोली आके बेबे नानकी दी हथा तू मखण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार। बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सूरत कन्ना विच लैके ए आवाज तो मेरे वीरन दी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा प्यार पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है। वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए। बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हाथ बेबे दा सिर अपने हथा ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सी रोक दई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन ठग नू संत बनाया है वरी कनारी दा मान तोड़िया है पत्थरों पंजे लगा के मोम करन वालिया तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नू मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आया मां नू भी मिले हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुद पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गलुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो सी भाई नेत्र खुल गए। अज माता तृप्ता नु 12 साल दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो सी भाई गुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलियां वाली गंढ लेंदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्र नू एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो सी भाई वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार जाए नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिले तेरे प्यार दीवाने होए फिर भी हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखा खुल गई मेरे अगे मत्था न टेक मैं कलयुगी जी बंदा गंदा हाँ।

रुपये नूर ना पिताजी मर्यादा रख रही। कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो के नहीं पिताजी फिर राय बुलार नू मिले काजू सुर पे अज सारिया नू दर्शन दे दे दे दे जिस वेले राय बुलार को आए राय बुलार रो रहा है ते पिया कहिंदा है सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानको करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जप नाम दे सके नाम ही मिल जाएगा। तो आओ प्यारी सास संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजरी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े प्यार है। एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दिया संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू रजिंदर नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां उस ने जंगल ही जंगल सी। बाबा जी ने इथे बख्शिश कीती पर जिहड़े आशक सन ओह रोज पहुंचदे सन। प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तो दिल्ली दर्शन करने वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मद्दे सर उन्हां कोल ठहरे अमृत वेले बाबा जी दे दर्शन करने वास्ते जान लगे तो राय बहादुर नारायण सिंह जी कहण लगे हरचंद सिंह असीं भी नाल चलांगे जी सदके चलो जी। कार विच बैठे आ गए अगे कीर्तन हो रहा है अमृत वेले आसा जी दीवार दा तो बाबा जी धरती पुटके नीवे बहिंदे सन बरागन लगाई है हुण भी कर लो दर्शन बरागन लगा के मस्ती विच झूम रहे हन ते प्यारी सात संगत बारिश शुरू हो गई। साहिबान नहीं सी कोई उते छत नहीं सी बाहर ही दीवान सजिया होया सी तो बाबा जी ने इशारा किया भाई कीर्तन करने वाले उते कपड़े तान दो तान दिते ते बाबा जी ने रागी सिंह नु कहा ए तुका पढ़ो केड़िया आप भी पढ़ ली

गुरमुख ऊजल हंस है मनमुख है कार। मनमुख ऊदे कमल है गुरमुख सो जाग मनमुख जो

कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो सारे सोने बाबे की विद्या। जो भाई गुरु नानक नूं वड्डा कहेगा, गुरु नानक

कमर कटारा भौकड़ा बंके का हसवार, गर्व न कीजे नान का मत सिर आली करोड़िया। तो केड़ी चीज का मान कर जवानी रे, जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जाए। ये झूठा हुकूमत का मान कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे हैं जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का मान करदा है भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी, ये मान भी की निरंकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछताए। साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी हो काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते दस्या। रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो, मैं पापी मेरे कोलो कुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिस दिन के शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता तां लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो आज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रहे, भुब्बा मार के रोई जाते। कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पड़ता, पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ।

रो लिया रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुको पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो हजूर ने अभी दृष्टि तकिया तुकिया करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पुष्ट नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिखती है दान पुण्य जो माया भी सत्य हम करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हम मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकावा दुध पिलावा अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल नहीं चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सी गल्ला की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे तक प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरना तो कह पातशाह मैं गरीब ते भी बख्शिश कर दी है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आ है फिर जिना संभाल लेता है वह पागल अज करोड़िए ते बख्शिश होगी तुहाडे ते भी गुरु की बख्शिश ते बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो सदीव ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना ये वड्डी आप जिन्हों के भागा बख्श दो वेले आके आप कीर्तन जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पास उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत पी तो ये दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगी मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द की अखीली तक पड़ी मरदाने ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले चो ये सबका की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का उपदेश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हिरदे च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखिए और लोग सुहेले हर कोई सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों के उद्यम दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकर सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरम कीर्तन की समाप्ति अमृतवेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरकरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया तला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उस दे विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साडे जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलिया, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द दे विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला ओ तन नू, शरीर नू जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नु की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक की चीज है, एक की चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलक ही कोई पता नहीं, एक ही वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲੈਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है गुम हो गई है रच गई है जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जाती है इस करके कहिंदे काया कमली अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नू नहीं पता काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है ओ काया दा गुलाम हो चुका है काया ने ड्राइवर नू टालिया है काया जो मंगदी है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है काया कमली हंस इयाना ते जिड़ा हंस है जिड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहते हाले बहुत मध्यम है वह न्याणा है वो हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की ना सुनी ना समझी ना विचारी ते उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई वह इयाना है जिधर काया लाई फिर है उसके पास वह चलिया फिर है सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है सारी ह्यूमन सोसायटी काया नू ही प्लीज करन दे उते लगी पई है काया कमली हंस इयाना एक पंक्ति छोर आखते हैं महाराज जी कहते हैं

आसा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आसा बंदी जा रही है, पर इस देही नूं ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वो सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम सिर इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत ए रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है। महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नू ही डैमेज कर लिया है। पूंडी चाल कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जांदी, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जांदी, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हन, ओ कंबदे हन। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, ये ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनु असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया। हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है। कन्न मिले सन सतसंग सुनण लई, रब दी गल सुन ली, उस पाथ ते चलन दे वास्ते वध तो वध इनफॉरमेशन सुन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण ओह भी समां लंघ गया, करन पह बहरे मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सेसफुल होना सी, ओह कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। तां महाराज जी इस इंसान नू कहिंदे हन, अंदले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

सारा कुछ गवा के तो फिर चल पे, सारा कुछ गवा के तो फिर केंद्र चले गए। अंधले तू जगत दे विच आके की पाया, जीवन की विदना है, जीवन दी विधि ही नहीं आंदी। महाराज जी ने इस शब्द आख्या है, ए तन माया पाया प्यारे, ऐ मेरे प्यारे इस तन नू तू माया दी रंगण दे नाल रंग लिया है, लबेड़ लिया है, पा चाड़ दिती है। जदों असीं किसे कपड़े नू डाई करदे हां पहलां उस नू पा चाड़दे हां कि रंग पक्का होवे उतरे ना, कहिंदे इस नू तू माया दी पा चाड़ दिती है, माया दे नाल रंग लिया है, अते माया दे नाल रंगया होया तेरा ए तन रूप चोला जो है, कहिंदे हन लीतड़ा लब रंगाए अते स्वादां दे नाल इस नू तू रंग लिया है, मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरु नू ए तेरा तन ही पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं है, मेरे कंत ना भावे उसनू पौंदा नहीं है, उसनू पसंद नहीं है। जिस तरह का तू इस नू बना लिया, जिस तरह का तू इस नू गिझा लिया, जिस तरह दियां आदतां तू इस अपने तन नू पा लिया हन, कहिंदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु नू इस उत्ते कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजे जाए के उसकी तेरी इंटीमेसी किवें हो सकती है, उसका तेरे नाल मिलन किवें हो सकता है, तेरे तन तो उसनू जो है वह बदबू आती है, तेरा तन जो है माया दे नाल दागी हो चुका है, स्पॉटेड हो चुका है, ए माया दी पाह दे नाल अते गलत किस्म दे अत्यंत किस्म दे स्वादां दे नाल ए इस दे अंदर चिक्कड़ बनया होया है, ए तन ही हाले अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्रेम दे काबल नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए, ओ तेरी सेज दे उते किवें आवे, तेरे नाल वसल किवें होवे, तेनू ओ मिले किवें, कहिंदे हन तू अपने तन नू ही नहीं समझिया। साड़ी परमार्थिक यात्रा दा हाल, साड़ी स्पिरिचुअल लाइफ दा ए हाल है कि असी अपने इंस्ट्रूमेंट नू ही नहीं समझे हां। गुरु नानक साहब सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दे विचों हुण असी इस नू आरंभ करना है, जो कि अगले एक दो दिन इसकी विचार चलती रहेगी कि सानू गुरबाणी दे विचों सब तो पहला अपने तन दे प्रति समझना चाहिदा है कि साडा तन की चीज है, तन की चीज है जिसनू असीं दिन रात वरतने हैं, असीं वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, पर सानू आज जरूरत है कि असीं गुरु बाबा जी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी दे विचों जो गुरु साहिबां ने इस तन दे प्रति सानू ज्ञान बख्शिया है वह सुनिए अते समझिए कि तन की वस्तु है, उस दे उते 13 नुक्ते महाराज जी की बाणी दे विचों मिलते हैं, 13 नुक्ते तो 13 दे 13 असां सुनने हैं कि उन्होंने तन दे मुतलक अपने विचार दिते हैं। आओ मैं आरंभ करन लगा हां। पहला नुक्ता है तन दे प्रति गुरु महाराज आखते हैं कि तुहानू पता है कि यह तन की है, कहते हैं नंबर एक यह दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु वह होंदी है जड़ी दात नाल बख्शिश दे नाल ते मिल जाए, वैसे तुसी उसनू प्राप्त नहीं कर सकते, वह दुर्लभ है। सो साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु वह होंदी है जिसकी कोई कीमत ना पा सके, कोई कीमत ना चुकाई जा सके। साडे पास जितनियां भी चीजा हन उना दी हरेक दी कोई ना कोई कीमत है, किसे दी घट किसे दी ज्यादा, हरेक देते कोई ना कोई प्राइस टैग लग्या होया है। साडे पास ओ केड़ी चीज है जिस देते कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता, ओ तन है जिस देते कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो जे साडे पास एक अजिही चीज है जो जिसकी वैल्यू इतनी है कि उसनू इनवैल्यूएबल कहना पड़ेगा, तो फिर असी कितने क अमीर होए, कितने क असी अमीर होए कि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जो कि बाय द ग्रेस ऑफ अकाल पुरख सानू प्राप्त हुई। महाराज जी पहला नुक्ता समझांदे हन ए दुर्लभ है, इसनू नोट कर लेना। कहते हैं लख चौरासी भरमतियां दुर्लभ जन्म पायो,
ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਚ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲੀ ਹੈ।

इस दुर्लभ वस्तु तो जल्दी तो जल्दी फायदा उठा ला, वो दिन बड़ा नजदीक आ रहा है जिस दिन ये दुर्लभ वस्तु ते तो वापस ले ली जाएगी। सो सानू गुरमत की जो विद्या है उस दे विच अपने तन दे प्रति हर रोजाना इस उपदेश नू, इस सबक नू याद करना चाहिदा है, लिख के सामने रख लेना चाहिदा है कि जेड़ा मेरा तन है ये दुर्लभ है, ये सब तो वड़ी अकाल पुरख की गिफ्ट है, मेरे ये रब दा सब तो कीमती तोहफा है, ये दुर्लभ है। कहते हैं

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कदे ऐसी सोचा कि मैं ही मंदिर हूं? आप जी ने कितनी दफा ये विचारया सोचा होएगा कि यही मंदिर है? बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखां नूं तां मैं नमस्कार करदा हाँ, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है बॉडी दे मुतलक ही। अज दस दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुन कहिंदे हन

स्पष्ट है लुप्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर से इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर से ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की होंदा है, मंदिर के अंदर शांति होंदी, मंदिर के अंदर पूजा होंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति होंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस होंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही होंदी है, पवित्रता ही होंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत होंदा है, डिवाइन म्यूजिक होंदा है, कीर्तन होंदा है। मंदिर के अंदर संगत होंदी है, साथ संगत होंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होंदा है, गुरुदेव होंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनिया है, असी कितने कंसर्न हाँ कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं है। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इतने झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआ इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हाँ कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर के अंदर ओ ही कुछ ले जा जो जान दे योग है। इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर दे अंदर दा वातावरण जो है वो पवित्रताई वाला रख। पर साडे अंदर की है, वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो ये कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन दे मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर